याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षां पन मातावन खान्य मरिय तुमान गे गतहा प्राणय उबिगे श्री कुमार अटोबिन वासस्थाने अक्वन लिस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सिह करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मनव මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා.